0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: स्नेहितरे, ಇಂದು ಸಂಜೆ 5:15 ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪೈಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್, ಪುಣೆ.

0: आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। मंजू द्विवेदी के साथ आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो चलिए आज के इस मनचाही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत सुनते हैं। लोफर फिल्म का ये गाना, आशा भोसले की आवाज़, आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है। और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश, अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और श्रद्धानंद केशरी की, श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनिता बिड़वे की, और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाज़ों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आज़ाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा शिवानी, चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का।

खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, नजीब खान, बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष, तरुण, दीपेश, दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृष्ण नारंग, कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्र।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिस नेग अकोला से शिवराज भारती, टीना, तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाई गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
4: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
5: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए।
6: ओए देख के चलो, ए तुरी जाना है चलो तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
7: ओए केड़े पिंडो आया है?
6: पता नहीं तेनू शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
4: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी

0: रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिसेस शर्मा बाहर ही खड़ी थी।
1: जो जी, कुछ बात बनी?
2: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
1: क्या कहते हैं?
2: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
1: इसका मतलब?
2: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बला कटी।
3: ये कैसे समझ लिया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
1: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
2: कोशिश करेंगे।
1: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
2: हो सकता है।
1: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
3: अरे तुम तो जानती हो, शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
1: आए हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना 2 मिनट।
3: ओहो, लेकिन वो
1: 2 मिनट बात करने में क्या हर्ज है, तो अपना पड़ोसी ही ना।
2: अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
4: अरे आइए आइए शर्मा जी।
3: नमस्ते
4: नमस्ते नमस्ते। अरे साहब, धन्यभाग्य हमारे आप हमारे घर पधारे।
3: अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप?
4: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं हैं
3: आप तो जानते ही हैं, दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है। काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
4: आप बैठिए।
3: हाँ बस मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ।
4: और सुनाइए।
3: वो बस ऐसा था कि
4: पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप?
3: नहीं,
4: पानी है सोडा?
3: नहीं नहीं, मैं नहीं लेता ये, मैं नहीं लेता।
4: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
3: वो बात ये है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
4: आई डोंट ड्रिंक।
3: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि अचानक
4: यू नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
3: हाँ हाँ,
4: आप इसे अपना ही घर समझ।
3: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझ कर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
4: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
3: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि?
4: हाँ क्या हुआ?
3: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
4: चक्कर? घनघोर चक्कर, बट आई डोंट ड्रिंक।
3: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
4: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना, बहुत कोशिश की हूँ, बहुत कोशिश की।
3: फिर आपने क्या किया?
4: बहुत कोशिश की हूँ।
3: फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया?
4: मैं ऊपर गया और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी।
3: फिर
4: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी है।
3: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई?
4: नहीं।
3: फिर
4: मैं और ऊपर गया।
3: अच्छा, फिर
4: वहां भी न रुके
3: तो
4: मैं और ऊपर गया।
3: और वहां? हाँ, फिर वहां क्या हुआ?
4: वहां क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक।
3: और वो लोग?
4: वो लोग नहीं माने।
3: फिर आपने क्या किया?
4: करना क्या, कह दिया उनसे।
3: क्या
4: कह दिया उनसे? नहीं मान दे तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली।
3: छुट्टी ले ली? कितनी?
4: पहले 1 महीने की, फिर 2 महीने की, फिर 3 महीने की।
3: लेकिन इतनी लंबी ली?
4: मेडिकल।
3: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
4: नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
3: जी जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
4: पहले 3 महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा।
3: क्या मतलब?
4: 3 महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं। ऐसे कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक। बस 3 महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा, लीवर।
3: जिगर जिगर।
4: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
3: और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
4: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना, साल भर से के नहीं रुकी है बराबर।
1: हाँ जी, मिला है? क्या मशवरा दिया उन्होंने?
3: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
5: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
2: तो क्या करूं?

0: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
1: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
0: यही यही यही तो गलती की है आपने। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए। जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
1: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।
0: जो कोई भी हो उसके घर जाकर उससे फौरन मिलिए।
1: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास 4 है।
0: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में। हम लोग क्लासों के चक्कर में फंस कर बट गए। क्लास 1 क्लास 2 से नहीं मिलता, क्लास 2 क्लास 4 से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर नचाते हैं।
2: ठीक ही तो कहता है किशन, ऊंच नीच को भूल के जहां से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए। जरूर मिलिया ही जाकर सुबह उससे।
1: अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ, लेने आ गया क्या?
2: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
1: और उषा?
2: उषा उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।
1: इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ।
2: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
3: अरे बस बस उषा, धीरज रखो। क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
4: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो। मैं तो ये सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आती है।
3: मौत से पहले मन में कायरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
4: तुम मत लोग होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
3: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आहो पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
4: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
3: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो।
4: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है।
3: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
4: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपता में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
3: हाँ हाँ, उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं।
4: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
3: कैसी भूल उषी?
4: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम करती।
3: हाँ, तो अब भी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
4: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
3: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जाओ। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए मैं बचा के रखूं। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
4: आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
3: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ
4: तो
3: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
4: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
3: क्या?
4: हम शादी कर ले।
3: ये कैसे हो सकता है?
4: बारात लाकर, बाजी बजाकर।
3: नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हूँ, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
4: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाएं, या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाएं। बस मैंने फैसला कर लिया है।
2: सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है?
1: क्या बात है?
2: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
1: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
2: राम जाने क्या उल जरूल बक रही है।
1: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
0: इस छछुंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए।
1: घनश्याम जी?
0: ओफो पिताजी, समझा कीजिए, लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
1: जी
0: जी
5: आज 19 जून है,

0: अरे आइए आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो लेके।
1: नहीं नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
0: हा?
1: मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ वो मैं अपने निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
0: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं आज ही ऊपर जाता हूँ और ये ट्रांसफर रुकवाता हूँ। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
2: क्यों खड़ा है?
1: कुछ नहीं, वो
2: इस जुलूस के साथ है?
1: नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
2: तो भैया जाओ जाओ अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
1: हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मैं क्यों भाई साहब, ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर
3: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: कहिए। कहिए क्या बात है
1: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
0: ठीक है बोलिए।
1: उनसे मिलना है।
0: अपॉइंटमेंट लिया है?
1: नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
0: फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
1: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
0: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद 2 MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं।
1: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
0: आपका नाम?
1: HP शर्मा।
0: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
1: थैंक यू। सुनिए यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
0: इधर पीछे नल है।
1: थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
1: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
4: आइए रतनलाल जी।
0: कहिए
1: जी। मैं HP शर्मा।
4: हाँ हाँ, काम बताइए।
1: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे साथ।
4: वही तो पूछ रहा हूँ
1: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
4: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
1: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
4: तो फिर अनर्थ कैसा?
1: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
4: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
1: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
4: देखो रतनलाल
1: जी, HP शर्मा। देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट में।
4: ठीक है, आप ऐसा कीजिए अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
1: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लेकर नहीं लाया हूँ
4: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए।
1: मैंने सोचा आपसे जवानी ही।
4: अरे साहब इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
1: मैं अभी लिख लाता हूँ।
4: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
1: नहीं नहीं, पानी पानी का कष्ट न करें मैं।
4: ओहो हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
5: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई, लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही, शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा

0: کو یقین دلانے لگی کہ یہ معاملہ اب انسان کے بس سے باہر ہو چکا ہے, اسے اب یا تو صرف بھگوان یا بھگوان کا کوئی پہنچا ہوا بھگت ہی حل کر سکتا ہے, یعنی نکشتر بابا کو بلوا کر یگیہ کروایا جائے. ونے ہر شام مسٹر شرما کو اپنے دوست کے ڈیڈی سے ملنے کے لیے تیار کرتا رہا.
1: آئیے آئیے مسٹر شرما, میں تو کئی دنوں سے آپ کے آنے کی راہ دیکھ رہا تھا. وہ ونے نے بتایا تھا مجھے کہ
2: آنا تو تھا, بس
1: ایسے معاملوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ویسے آج کل آپ کے منسٹر کون ہیں؟
2: جی وہ منسٹر تو, لیکن آرڈرز تو کسی افسر نے.
1: نو نو نو, میں یہ افسر افسروں کو منہ بالکل نہیں لگاتا. یو نو آئی کیپ اونلی ٹاپ کانٹیکٹس.
2: جی
1: آپ بالکل فکر نہ کیجیے, آپ کا کام ہو جائے گا. آپ مجھے ذرا تمام ڈیٹیلس لکھ کر دے دیجیے گا, میں آج ہی آدمی کام پر لگاتا ہوں. یو نو انگریزوں کا زمانہ اس لحاظ سے بہت اچھا تھا, رشوت دے کر سب کام ہو جاتے تھے, لیکن اب آج کل تو یہ سب چلتا نہیں ہے, بس کانٹیکٹ کی بات ہے.
2: جی
1: کانٹیکٹ میں کروں گا, آپ صرف ڈیٹیلس دے دیجیے گا. باقی جو ہمارے آدمی ادھر ادھر جائیں گے ان کے خرچے وغیرہ کے لیے, وہ آپ ایسا کیجیے کہ ابھی کوئی 5,000 روپے چھوڑ جائیے, باقی خرچہ میں کر لوں گا, بعد میں آتا رہے گا.
2: 5,000؟
1: ہاں بس میرا خیال ہے کہ اتنا ہی خرچہ اور آئے گا.
2: وہ تو
1: کیا کیا جائے,
2: وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس تو اتنا.
1: ارے شرما جی یہ کوئی خرچہ تھوڑی ہے, یہ تو انویسٹمنٹ ہے. اس سیٹ پر رہیں گے تو کئی 5,000 آ جائیں گے.
2: نا ایسی بات نہیں ہے, ایسی کوئی سیٹ نہیں ہے.
1: تو پھر ٹرانسفر سے پریشان کیوں ہے؟
2: مجھے میں اپنے گھر سے بے گھر ہو جانا نہیں چاہتا. دیکھیے نا میرا سارا گھر برباد ہو رہا ہے, سارا پریوار بکھر جائے گا.
1: ہمبک, ایسا کچھ نہیں ہوگا, ویسے آپ کی مرضی ہے. بات یہ ہے شرما جی کہ میرا بزنس ہی پبلک ریلیشنز کا ہے, آپ کا یہ کام 1,500 میں ہو سکتا ہوتا تو نہ مانتا, لیکن خرچہ تو 10,000 ہو سکتا ہے. اب اتنا پیسہ میں بھی کہاں سے, آپ بھی سوچئے.
2: آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس میں ہوتا تو اس ٹرانسفر کو رکوانے کے لیے 20,000 بھی خرچ کر ڈالتا, لیکن کیا کروں, ساری زندگی کی جمع پونجی بھی اتنی نہیں کہ 5,000 خرچ کر سکوں.
1: اوہ آئی سی, ارے میں تو بھول ہی گیا تھا, آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں؟
2: نہیں نہیں بس شکریہ, پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا.
1: آپ کا اپنا ہی گھر ہے, ویسے کبھی کوئی کام ہو تو بلا جھجک چلے آئیے گا. کانٹیکٹ مانگنے میں مجھ سے بہتر آپ کو کوئی نہ ملے گا.
2: نمسکار.
1: نمسکار.
3: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का.
2: यज्ञ तो ठीक है पर पीछे ये हलवाई वगैरह.
3: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद.
2: 201 ब्राह्मणों का?
3: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे. वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना, देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी. मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए.
2: मगर इतना पैसा
3: तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे.
4: पिताजी कोई आपसे मिलने आए?
5: अरे भाई जिजमान आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है.
2: जो भी हो उसे बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ.
3: नक्षत्र बाबा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़ी, ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए.
5: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते.
3: बाबा ग्रह टल जाएंगे ना.
5: भाई अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं.
6: ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी?
2: मैं समझता हूँ महाराज.
5: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद की तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे, हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा.
2: सच बाबा?
5: हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान.
2: 1.5 तोला सोना?
5: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले.
2: 1.5 तोला सोने का दान?
3: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है. बाबा अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
5: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा.
2: सच कह रहे हैं आप?
5: अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा.
2: हे भगवान.
5: बोलो जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
2: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
7: माजी माजी माजी,
3: क्या बात है, ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
7: माजी पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं परंतु 201वां ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
3: हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन है, अब क्या होगा?
1: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
8: पिताजी ये आपसे मिलने आए थे।
2: ओह, आप क्या
1: 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव।
3: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा, ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवा।
8: आइए चंद्रकांत जी।
3: देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर मेरे घर में आए।
2: चंद्रकांत, चंद्रकांत सीके यादव? नहीं, ये चंद्रकांत
3: क्या ब्राह्मण नहीं?
2: सीके यादव है
3: तो क्या ब्राह्मण?
2: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
3: क्या कह रहे हैं आप?
2: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है। नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
3: ये क्या कह रहे हैं आप?
2: यही है वो चंद्रकांत यादव, यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती, अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
3: ए राम, कैसा अंधेर है। अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी।
7: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
3: आइए आइए, भोजन दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
8: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। है? ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
3: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
1: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
8: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
1: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
8: तो सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो?
1: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
3: तुम सचमुच आ गए हो?
1: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
2: कहाँ के रहने वाले हो?
1: इंदौर का।
2: और तुम्हारे पिताजी?
1: इंदौर के।
2: और तुम्हारे दादा?
1: दादा, पड़दादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
2: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
1: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊंगा।
2: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
3: और यमदूत की तरह आगे हमारा घर बांधना उजाड़ देते।
1: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
3: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, पिताजी अब क्या होगा?
2: जाने का समय आ गया है बेटा।
8: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
3: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
8: फिक्र ना करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
1: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
2: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
1: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
2: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूँ और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
1: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज चौथाई इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
4: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
2: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
0: 22 जून, साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसर सा सामान रखा जा रहा था। H.P. शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुमसुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना

होते हुए देख रहा था। लाचार, बेबस शर्मा जी ने बड़ी ही हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और थ्री व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता

0: प्लास्टिक की घास, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीना नाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।